0: ताइबंग पाल सिदा सांगा थवाय पानब जीब कयाग लोइनना मियोइब आइखोइन हिंगले मियोइब दना बलैना गि चादो हुमफुदि सांगा दिगि छंदो ए खुदमोइना रेबीज बर्ड फ्लू अदुबो इचम चंबो उपाय सिजन नदुना लाइना कया असिदगि गाथोक पंगम गने सासन पाइरोरब मतुम खुद सा सेंगना हमदो पियो चानब सांगा येन चिंगब मुन्न थोंबियो मसखंगदब सा नत्रग लमगि सा उरबदि मनात चंगबिगनो फॉरेस्ट्री नत्रग बेटनरी गि मरि लेनब मियोइ सिंगद पाउ पिबियो सा उचेक योक पिरिब सिंग लुना नाना योक पियो आइखोइग तना थानब यात्रब मरुप सिंग असिना मसा मऊ फन हिंगलग ताइबंग मियोइब आइखोइसु इसा फगनि पाउजेन जरिबा रीजनल कोऑर्डिनेटर नेशनल वन हेल्थ प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ जूनोसिस डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी रिम्स इम्फाल
1: मणिपुर यूनिवर्सिटी एफिलिएशन फंगलबा हिंगांग कोंथा अहलुप इम्फाल ईस्ट लेबा ब्लेस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड एलाइड साइंसेस बिहासना अहान बसेक्शन लिसिंगनी कुंतरु कुंतरित की ओइना बीएमएलटी कोर्स की फॉर्म था बहुजरे
2: अकक नब शीट खर खक लोग जगनी टॉपर सिंग योइबे स्कॉलरशिप पिजरी नुपी मसा सिंग तोंगान ब हॉस्टल ले जगनी नुमिदांग पुंग तारा फाव हांग ब लाइब्रेरी
1: सेकंड ईयर मदि थर्ड ईयर महिरोय सिंग ओइना एनएबीएल एक्रेडिटेड ओइरबा ब्लेस डायग्नोस्टिक्स ता हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल इंटर्नशिप की फैसिलिटी फंगन जगनी
2: आईडी महिरोई सिंग योइना 10% सीट खाचरी एडमिशन फीस लोगजरोई अतय अतय फीस सिंग जसु कंसेशन पिजगनी
1: अकोप मरोगी दमग 9863 658569 दा तानबियो

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: हेलो,
1: हेलो तमो
0: किधर है?
1: ngasi ayeng banu pa mala ami papai mana haina ba male
0: mi do kum do we
1: madu hang bagi kari kana ga de ke mathau su ta di nangai kam do ba khana ga da ba ne
0: nang na pam do ai ya ya
1: ai na pam ga haino nang na pa ne wari thu na lo ngasi mang na tra su ya ai ayeng la hang chi da che na ba tau si ai na khoi de chen bo ina la kan ni ko
0: यारे नशी देगी ऐ गाय देगी फोन तो पाव फोन नशी
1: अतो मिना सिंह नशी को
0: होय
1: कुंभा मम्मा सोए की बता एक होय निपुंसी की काई ना बाहे दो ऐ की बाया है
2: काई ना
1: इमा
2: है कनाडे ना फोन तो कनाडे ना नंगी लायर बनुपा दे दरो
1: इमा
2: हाँ गए को मधु ओए रोय को ओए रोय हरी सिनी ऐ ना सुख ओए ओए रोय को मधु
3: बीमा वाकन ताना सी लिम नशी पसन नशी
1: मशी दी
3: मोबाइल मिली दुन कनाडे ना नंगी बुंगो एगदबदो अदुना ngauksinnabani haina khangkre
1: papa
3: haujik ta mama sa mapa phone do waloina de hajit hauno bi waroi pot lakla ni haye kuthi yeng narga yarga na ngasi tarani kunista lohong lagani
2: hong do rabani
3: adu degi isanu pi thane leima khwai degi ina kun bi aibdu oyu duri bani de
2: hai phone do piro kada मेरा हाय बनी
1: इमा
2: कदाई नो पिरो आई बना पागा इगे ना मुंदी ने यांत्र पिरो पिरो
1: इमा
2: पिरो हाय बनी हे
3: हाय हौजिकती नुमित लेब नो रबनी ना नसा नु पिसे थोंग मरोन तरे लोन बा हाय बदो लो लगा मथक की मथोन का फम का बे याद रो शोलो शलो मथक त काल का चोक थदन सिन थिला की दिको
2: होय होय
3: अदुन ने ममानब लाक पसंग बदा चेक तौबा मोबाइल पुसन बदे यादबा फोन पुदे चेक अमुक तौबा
2: अस मीने साउ दने ने लुहोंग बका अमत तलाक त तोकनी को
3: हे छाउ के साउ सुनु लाक त सुनु
2: फाजेन दने थमो लुहोंग ब मिकु त पुथोनी सिदबु काय दौ दोइनो
3: नंग सिदि तंबु नम रेने ngai khone na khoy gi nokwa ani duga mama na ba kharaga luhong ri phaw gi di sida lai yu haidra sin bi yar wedra haibni
2: adu gi bidi ya ni da
3: नान खंगनी मागी वजादुना ममानबा फाउबा मरी मंगा हेक पुरकतुर लाखलबदि
2: अदु हे या पोतेदा सिकबन खादना गे लोनना लैदिबु
3: आइ खोइन न नफु हापुद सिक्सन गुन अमनि रे खंगांग वखन दालुने लोंग इसे मागी फनबनि खंगलुने
2: होय होय होय होय आइ बेमा जादु इंग्रनि थकचलो
4: इमा आई इंग थे थानेल नंग मसी हुई कांगबूद बातोनम तौद्र माने
1: याद्रे चा पायो
4: कम तौरीनो खादी खुद हेक्त
2: बेमा यानी सोबाइनीको नपथोकेसे
4: इमा फीम पीबीओ नपथोके
2: यानी बेमा नपथोके हौजिक तैन पाइरम फीदू
4: कदाई मान पीरपने इमा इखाई सर तौरीसी यौजे हौरे
2: चलो चलो
4: थिंदोरो जेनदने
1: मागे चिट्ठी करी बुहारी
0: थानिल मियोइब हाइबसे हानना सक खंगनद्रबसु मरम थेनाब मई फाउ चलगे लेहौरगे हाइने नंग खर नंगी ख्वाइदगी लूब मायोन खोंचत चतकीगदब तुमिन लेहौब हाइबसे चुमदब रखनबदगे सिथी इखिबने मरमदि नंगना तामो चतलगे हाइब ऐनसु चतलो नुंगायु याइफबित ओयु हाइननबगी खुदोंग साब तंजातुमदि फंगनद्रे थानिल करिदि इनी हाइबताबने
5: ꯅꯪ ꯑꯩꯅ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯕ ꯉꯝꯂꯔꯣꯏꯗꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯐꯨ ꯊꯧꯅꯤꯡꯁꯤꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯄꯄꯥ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯍꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯅꯪꯅ ꯋꯥꯖꯔꯕꯁꯨ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯅ ꯋꯥꯠꯇ ꯄꯥꯗꯅ ꯍꯤꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯡꯅꯔꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯆꯨꯁꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯌꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯅꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯑꯁꯦ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯇꯥꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯪꯕꯨ ꯎꯔꯨꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯐꯖꯕꯗ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯇꯨꯃꯛꯇꯗ ꯉꯥꯎꯈꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯃꯣꯏꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯥꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯑꯃꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯛꯐꯝ ꯎꯔꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯂꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯣꯜꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯄꯄꯥ ꯃꯃꯥ ꯋꯥꯔꯛ ꯆꯦꯠꯄꯅꯤ ꯑꯩꯒꯨꯝꯕꯒꯤꯗꯤ ꯋꯥꯆꯦꯠ ꯃꯩꯇꯥꯟꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯈꯟꯊꯍꯧꯗꯕ ꯑꯁꯤꯃꯁꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩ ꯌꯥꯏ ꯅꯪꯒ� ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯈꯣꯡꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯃꯍꯥꯛꯇꯤ ꯁꯅꯥꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯔꯨꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯩꯇꯥꯟꯗ ꯋꯥꯆꯦꯠ ꯃꯩꯇꯥꯟꯅꯤ ꯐꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯝꯕ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯄꯥꯅꯅꯕ ꯆꯤꯡꯅꯗꯅ ꯆꯠꯈꯣ ꯊꯥꯅꯤꯜ ꯍꯩꯅꯕꯗꯥꯏꯅꯦ ꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯏꯅꯅꯕꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯛꯏ
1: ꯁꯩꯔꯦꯡ
5: ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯨꯗ ꯇꯝꯖꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ
1: ꯀꯗꯥꯏ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯀꯗꯥꯏ
5: ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯏꯄꯥꯛꯇꯒꯤ ꯅꯪꯅ ꯂꯩꯆꯤꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯈꯤꯛꯄꯤꯔꯛꯎ ꯅꯣꯡꯂꯤꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯪꯂꯕ ꯆꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯛꯂꯕ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯊꯤꯔꯛꯎꯅꯦ ꯑꯩꯕꯨ ꯅꯥꯀꯦꯟ ꯊꯥꯒꯤ ꯎꯅꯥꯂꯛꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯇꯥꯕ ꯁꯦꯛꯂꯥꯅ ꯍꯤꯛꯅ ꯍꯤꯛꯅ ꯇꯦꯡꯊꯥꯔꯤꯕ ꯑꯀꯪꯕ ꯎꯄꯥꯜꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯅꯪꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯗ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯅ ꯃꯗꯣꯝ ꯀꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟ ꯑꯩꯇꯅ ꯈꯪꯖꯩ ꯀꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯊꯥꯅꯤꯜ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯅ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯆꯤꯡꯊ꯭ꯔꯥꯎ ꯆꯥꯎꯍꯩ ꯍꯧꯕ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯈꯤ ꯑꯁꯪꯕ ꯐꯤꯔꯥꯡꯖꯤ ꯃꯥꯟꯕ ꯅꯥꯄꯤ ꯊꯛꯇ ꯆꯣꯏ ꯇꯥꯕ ꯂꯩꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯣ ꯅꯣꯡꯃꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯅꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯤꯡꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯑꯦꯟꯁꯥꯡ ꯀꯥꯡꯍꯧ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯒꯦꯀꯣ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯐꯝꯄꯥꯛꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕꯤꯒꯗꯕ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ 이롬 세나자오바 아두가 누비기 삭담 람비게더비 민호이나 번제라보다 다닐레이마 니부 다가짜리 다무이 세잉나 야이파비 야이파바 오유하이자리 분식이 콩 탕코딩 마이 빡비요 나아키 마땀마마기 라마칸기 콩부로이 나시기 날람란바 요예
4: 다마
2: ไปจ้าโอเคป่ะไปจ้าโอเคไฮสิทีกระนั้นน่ะเปียนไปสิทีเนาะฮะเฮาจิตะกับทุกายน่ะมีตัวน่ะโอยดีนี่เนี่ยไอ้น่ะพอดีเล่าเนี่ยสารดุดอกโอยดีเนี่ยป่ะมาทุกคนน่ะเนาะเฮ้อะทุกคนน่ะเนาะลูกของไว้หันมาชุกแก่ยาเลยโกไอ้เนี่ยหายสิมาดุหันมาชุกแก่ยาเลยติมานำหน้าให้ดุสิลูกของบ่ดีอีมานะบิกะน้ำตะละโอยเอ้ก็อย่าดุมีตัวเองนูไว้บ่นูมีโอยโลยเอ้ก็อย่าดุมีโอยนูไว้หนูไงยายเพิ่นบ่สนะทุ่งนี่คลิดอไอ้

आकाश पानी इम्फाल नोलिनी देवी नौ पजरी अहानबाट मरुब पाव गृहमंत्री श्री गोविंद दास कौठौ जम है सान खुनब नहाजिंग पुनब कालू फुरुक की खेनब थमदी चाब पुरब अचौब थी केंद्र की गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय नागालैंड की मकोकचुंग जिला चतना चाखुरंग थ्रे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की मपांगल कनखटनब पांदम निमितनी चटगदब जाटेटा की वर्कशॉप उड़ीसा की भुवनेश्वर होगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की राष्ट्रपति प्रबोपो सुबियांटो लेबाक अनी की मरी हेन फगटनब वफम कया खनगनी गृहमंत्री श्री गोविंद दास कौठौ जम है सान खुनब नहाजिंग पुनब कालू खुरुक की खेनब थमदी चाब पुरब अचौब थी वफम से हूंमसुब राज्य था की सुब्रत मुखर्जी फुटबॉल टोर्नामेंट लिंगनीकुनतरुक इम्फाल वेस्ट की लंगजें आर्टिफिशियल टर्फ ग्राउंड हौदोपी थौरम सरुक यादना श्री गोविंद दास फोंदोखिबनी मानना नहाजिंग माई पाप मैं पादमसे की मिचट पुरब हमने राज्य की यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स विभाग ने छब जही तरह तरह मखा मचा मचा टोर्नामेंट हौदोपी थोरम यास की डिरेक्टर मयंबम भेट

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज की थौरमनी कना ओबी रबनो। लाइबक थीबदगी कॉल अमा लाइन याद अदुना तत्कीबगलोइनना इसे इमखाताना तहंचेरी।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज की थोरमदा तराव नोक चेरी कनाव भी रबनो।
1: नहीं, आवाम कुछ खुना उतर की लाइटन जब उन भी प्रियापति में मैं
0: लाइटोन जम ओंग भी प्रियापति
1: हाय मैं
0: होय ngasi si kari kari ofam sing thambi ning bagi hai bio
1: मैम खान देगा कोई की लाऊंगी और बनीना खंगम द पोपनी ना वाखन जी एकदम नोंगी ना चला तब जैसे चला हाँ लगा तो फ़ोन खंग द बस फ़ोन खंग द बा तो उधर ले दे मैं कोई कोई है तारे हज़ी अकोई ना वाल इसे मायना अकोई ना तुम ये अकोई ना चंद्र ये वही जाए छुट्टी के गा मौन ना मुखे ना अकोई ना वाल इसे दे ही ना वाल भी ने बा मातम से आ ओले इबा इन वसागी के ने से अकोई ना सुम हज़ी कर कर चंद्र हो गया जी को मैं जा चुकी ना अकोई दिख रही ना वाल भी ने सी ये दियो तानी मेरी तो मैं आम दाई ना हर चीज़ तो भी मतलब घर ले इतना सीधा राम ने चिंगर इतना ही कोई दूसरी से करना तो का कोई मैं आम तो ना मत किया तानी ने तो ना वो तानी ने तो ना इसी में मैं सीधे ना बा सुने आम जी तो भी मैं सीधे ना हर मैं आम मांग लेता तो हर चीज़ में
0: yamna chumba wa wa khaloni hauziki matam yamna tangai fadraba mi gi masingna nong manung mugi asma sum hendalak pa upal wapal gi masingna asma sum walak pa sida tung gi damakta tau jaba ya draba tau phadraba thodang amani khanna upal wapal thalmin nasi tung gi damakta yatmin nasi thoram mayamama lakadaba mayama si damakti aifana basinmin nasi haidena mamal yamla wa fam sing phongdok pi bani hauziki lawi singi pi bam sikaram haina
1: ja sing chi lai da ma ma tam hun la ga khu na hing na ba gi sam ba kai no shi ti sing gi sa gi ram ra ga di la ri tu khak na a suk sau khak le hai ba sang ti sing gi na khu gi sa xi gi mo chi ya ba po a pu thok pa hai ga chi ha gi khong ka pu thok phri tung ra su pu thok nga ha je khu khan na ja di ba ni na ya ra ga di long mi sing chi kha khu na ba a tu ga a hing mai ba khu mai am na long mi sing chi sau ka ti ba ka mai to ga वो तुम कोई ना कोई मालूम से कोई फजना था मम्मी से ऐसे भी फजना था जिन बार जो वाकन काम में ना था ऐसे काम करने
0: अचुम बनी नोंग जो नुंग सा खंग दना नोंग तारा बसु नुंग शा सारा बसु तो फजर बताऊं दांग नी मदम दी ऐसे मसम हो कि नी पांबी सिंह बी दी था दबया रोई चाटोक पोटोक

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो,
1: गुड आफ्टरनून लेडीज की थरमदा तारामनोक चरी कनाव बिरोबनो।
0: आई कैनो जिंदगी में था
1: जिंदगी मेधा ngasi amu wari sanab gi tanja phang basida kari kari wafam sing haibi ning bagi haibiyo
0: कैनो हरी खरी इसे सिंचे नई नुगाई हाई ये तो
1: इसे इसे नुगाई बखक तरा हजिक सिबु करी करी गदि होना बिरि पगी हैव दिस थम बियो
0: होना मधुदे जुंगी थबक जुंग द ओइने थबक जुंगी ओइने हाउस वाइफ ओइने
1: चाक थुंग बिरम लिब्रा फी सुबिरम लिब्रा करी थबक तौरगा
0: ओ
1: रेडियो सिता बिरि नो हैव दो
0: फी
1: खजेनि
0: सुरंबा
1: बा होय फी सुना सुना रेडियो ताबगी महाउ सिसु महाउ अमनि अदुनबु इसाई से यामने नुंगाई हाइदने थंबिरक पनि न लौजे
0: ओहो
1: होय अदो करी करी वाफम अतोप गदी थंबिनिंग बले बिबके
0: होय अदो पिसुम लैजद्रे कैनो इसे फिसु सुने इसे नुगाय ना हाय के न तौ बनि लिदो गी कैनो प्रोग्राम से नोय नुगाय
1: होय अदुदी गसाई लिसनर मन जन बिखिबो पाखोंग दो सोइदन मकी ताहोरम गनि हायने खंजै पीबदि अदुम पीबा पुथोक पदि गम दबा करी पाखोंग नो
0: आइ जो अदु
1: पाखोंग दु
0: हंजे
1: खंबि
0: तौ
1: रोइजो
0: बनिबा हाय बिदि अदुगी कैनो

0: हेलो,
1: हेलो,
0: गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून लेडीज की थोरमदा तराम नोक चेरी कनाओ बिरो बनो
0: अवांग लेकिन था भी मिमी ने हाँ
1: अवांग लेकिन थबी देगी मिमी हौजिक सिबु करी करी होत ना बिरम ली बनो
0: जी मैं तो पगा में समता रहा था पता तो का पता रहा लेडी
1: हो याम नुंगाई जई थोरम ताबी रम बगी दमकता अदो ngasi di kari kari
0: मैं तो या
1: वाफमसी
0: तीनों का
1: होय
0: हम जगह ने
1: याय याय हंगडियो
0: रसीगी ला तो मोला जुआ नि दा
1: होय आकाशवाणी इम्फाल ना मयाम गिदा मक्ता लांथुक चरी बथरा मसिद पेन बी बगी नुंगाई हेने थंबी रखपा यामने
0: अदो
1: नुंगाई ब
0: थारोम
1: फोंदुक
0: कुति
1: जई
0: मक्कल
1: होय होय
0: ओइ न नुंगा नि थाना गि से छुओ न मर हम तो के बलि ला तो अदो सु नुंगा जई
1: होय करम बथौरम नगदी ख्वाइदगी हेना पाम ना ताना बगी
0: मैदान
1: अदुसु
0: समझे जी आम तमना ताई
1: हेलो ताबी रब्रा
0: अतारे तारे
1: करम बथौरम ना दी हेना पाम ना ताबी बगी है बदुसु थंबी
0: हवा माल के अके वेना बक हव कहने तो ये ना आयु के पोंग मंगा मखाई दिगी तक समय दान संतोष तेरी जा
1: होय होय
0: आ किधर ये ना अभी नारों की खंजन दा आ कहने दा की क्यों नगी बतो
1: होय
0: अब जैसे अब नुआ पाया पता मैदान में तो संतोष तो जो बात तो पाया वो नुआ जो आई ना एक फोन तो जरा पढ़ने मैदान में आगे तेरी
1: होय थाके चेरी अखोई ना लांथुक चेरी बा आकाशवाणी इम्फाल की माइकई देगी मयाम की दमकता लांथुक चेरी बा थोरम सिंह सिबु हराउ ना पे ना ताबी बगी दमकता सु आकाशवाणी इम्फाल की माइकई देगी अदोम बुसु थाके दो फोंग दुक चेरी नसी की ओइना दी इसे यम खुदोल तम जरत लगे मयाम पुना तामिना से
0: अच्छा थारे सेविंग होता
1: ताहन चेरी बा इसे ऐसी नमा से चपू हुरान बिनी हरे बा फिल्म से दगी अमरजीत लौरेम बा मामदी माधुरी ngasi pamgi apun ba khonzil da herojit nawre bam na sering ba madi amarjit lawrem bam na serang ba se se gi makha cha tharak pasaruk ni mayam puna tamina se

0: हेलो
1: हेलो हेलो,
0: हेलो,
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून लेडीज की थरम दाय तराम लोग चेरी कनाई बिरो बनो
1: निगम थोंग जाओ देगी तनुजा मैम।
0: निगम थोंग जाओ देगी तनुजा निगम थोंग जाओ कदाई वाई देगी और बिरो बनो
1: निगम थोंग जाओ अवांग लेकाई हाय देवा।
0: निगम थोंग जाओ देगी तनुजा नसी आकाशवाणी इम्फाल की गुड आफ्टरनून लेडीज की थरम दा सरुग याबी बस सिदा करी करी वाफम सिंह हाई बीनिंग बगे थम्बियो
1: ओ मेम नहान जे अकोइगी थोंग दुदा अकोइगी कनो गारी कन्न थौबा दगी जे सांग छुदन थौबा गारी अहुम नमजल थौबा सही छुदन थौबा गारी के का मय हम म निसा जाब को तो मय हम म फाबी ब को अदो याम नुंगाई जे हाइ जगे तो जब ने तुमाई ने मंग म स तुमाई अ मु तो बी ब जे नम जि जत द जो अकोइ जु नुंगाई जे न हाइ के तो ब
0: अफब खों थांग अमा बु थागत ब फोंग दोक पिरक पनि हाइन लौजे अतो प करि करि वाफम सिंग दि थंबिनिंग बगे
1: अतो प दि गजु तो तो प दि लै जे जे मैम।
0: करि करि दि हो नबि रि बगे हो जिक्सि बु हाइब दि चा इसिंग तो पिरा ब्रा कै दो बिरम लि बनो हाइब दो
1: औ ता तो चे रे मैम।
0: अतो प वाफम थंबिनिंग ब लैत्रे हाइन लौजे रेगा इसै मखाता ना खुदोल तमजेरि तमिनसि कोल तो बिरक पगि दमक तसु थागे चेरि अदोंबु होय
1: अगर
0: चरी मेम बुझो हई हई इसे मखा ताना मयाम गपुन्ना तामिने नबगी दमकता लांथोक चरी

धन्यवाद सिल्की। नमस्कार और खुरमचरी दोस्तों, मैं निंथा खोंगजम रंजना आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित संगाई चैनल में।

दोस्तों, बारिश न होने के कारण सब उदास और निराश हैं, क्योंकि हमारी और आपकी पूरी आजीविका खेती पर निर्भर करती है। तो क्यों ना आज इस उदास और परेशान दिन को कुछ प्यार भरे गीतों से सुहाना बनाया जाए। आज के गीत माना कार्यक्रम फिल्म संगीत में तो सुना जाए ये पहला गीत, ये दिल लगी फिल्म से लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ों में। समीर के बोल हैं और दिलीप सेन समीर सेन का संगीत।

दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप अगले गीत को सुनकर और भी खुश हो जाएं। तो सुनते हैं अगला गीत फिल्म बरसात से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। समीर के अल्फाज हैं और नदीम श्रवण का संगीत।

दोस्तों, जिंदगी की यही रीत है कि हम अपना फर्ज कभी ना भूलें, प्रकृति के चक्र का सम्मान करते रहें और मुश्किल समय में धैर्य बनाए रखें। अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म आशिकी से अनुराधा पौतवाल और कुमार सानू के युगल स्वर में, समीर की शब्द रचना है और नदीम श्रवण का संगीत।

सुना चाहिए अगला गीत फिल्म रंगीला से आशा भोसले और आदित्य नारायण की आवाज़ों में महबूब के बोल हैं और ए आर रहमान का संगीत

दोस्तों, उदास होना जायज़ है, पर उस उदासी में अपना पूरा दिन गवा देना गलत है। आइए मुस्कुराइए और सुनिए इस अगले गीत को, जो है फिल्म जीत से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में समीर के बोल हैं और नदीम श्रवण का संगीत है।

दोस्तों जाते जाते ये आखिरी गीत आपको सुना जाते हैं. फिल्म का नाम है अकेले हम अकेले तुम, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और अनु मलिक का संगीत. सुनिए इस गीत को और मुझे आज्ञा दीजिए. नमस्कार.

ताबिरे गीतमला आकाशवाणी इम्फाल हौजिक पुंगफम असिद पुदुन लाक्चरी अरीब फिल्म से मदि मतम से सिंह खुदल की अहानबदा ताबिरसी ओलांग थागी वांग मदसु हरिबा फिल्म असिदगी आरंभम जमुना मदि खुनजय कुमार की अपुन बखोंजेलदा खुराइजम फुलेंद्रना सैरिंग बमदि जोय श्याम ना सैरंग बेसे खुदल तमचेरी तमिनसी

0: Tabire Western Music Akashbani Imphal Hauzik Nungthilgi Pung Ahom Tarak Pagaloina Na Mikup Kharagi Manungda Manipuri Da Pau Taba Phangbiragani
1: Akashbani Imphal Nolini Devi Na Pau Pajari मुख्यमंत्री यमुनाम खेमसा ना सभापति ओइतुना कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन विभाग के ऑफिशियल सिंगंगसी मुख्यमंत्री सेक्रेटरी एता मिपममा पंगथोकरे मिपममतुर सरकार ने पकली बैठक थौरम सिंह मियाम द खंगना बगे मतांग द खंगनकी सोशल मीडिया टटागत पवारोल अमेटा मुख्यमंत्री नहाय विभाग असिन बेनिफिसरी सिंह द साना थकना पोलम सिंह मतम साना फंगन बटा अचो बैठक लौरी पेट्रोलियम की पुथोक सिंह एलपीजी अमसुंग नोंग मद तंगाई फतने चंग पोलम सिंह चांग नाइन फंगन नबा सरकार होनरी अमरम द मुख्यमंत्री यमनाम खेमसान का आकाशवाणी इम्फाल की ऑफिशियल सिंह उनकरे उनबतु दंग कोई सहर जी बाम द आकाशवाणी इम्फाल की ट्रांसमिशन अम थमन बगी मतांग द खनकी सोशल मीडिया दे थागत पवारोल अमद मुख्यमंत्री नहाय प्रोजेक्ट असिना राइजर सिगी मरु ओइना गंखै अमसुंग मनुंग हंजिन ब मफम सिंग द लेरि ब मियाम द इ पाउ फंगन ब द हेन खुदोंग सह लगनी राज्यपाल अजय कुमार भाला ngasi सेनापति जिला गि यंग कुलेन बिले समसु विलोंग कुलेन द सतुना कुंजा सिंग उन दुन तोंग तोंग ब व फम कया खनखरे कुंजा सिंग नसु सखु थोरंग गि मतांग द राज्यपाल द मेमोरेंडम अम खुसि नखि कोंचाटा दुरे जिला असिगे डिप्टी कमिश्नर एसपी अमसुंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गे ऑफिशियल छिंगचु छरुक याखि गृह मंत्री गोविंदास कोंटौ जमना हाइदि छाना खोनबन नहा सिंह अमत ओइन पुंचिन बा कांगलुप फुरुक विकेन बथम दबा अमदि नुंसि सानब पुरक पदा अचोब थौतां लौदि हुपमंगा सुबडाइजर थाकि सुबटो मुखजि फुटबल टूर्नामेंट लिसंगनि कुंतरु मसि इम्फाल वेस्ट कि लंगजिंग आर्टिफिशियल टॉप ग्राउंड द हौदो पगि थौरम द छरुक यारतुना श्री गोविंदास नवा फमसि फोंदोखि बनि मांगनाय नासिंग लम मसिद माइ पाक पंगम न बमियाम न सु मतेंग पांगबितना लमद मसि के मिक्सर पुरक पंगम न बहोन बिनसी राइजे की क्यूट एफिशिएंट स्पोर्ट्स विभाग न सिन ब सही तरह तरह मखागी नुपामचा मसिंग नुपी मसा संगे टूर्नामेंट असि हौदो पगी थोरम द यास की डायरेक्टर मयंग बम भेटो दोना चार्ज अवार्ड टी अली बम सा पद्मश्री एन कुंजरानी अमचुंग ओ बिम बिम न सिंग ब छरुक याखी सेयोल मचुप ने सथरक पहुं बुतरा तरे चुब बन महोत्सव लिसंगनी कुंतरुक सांदेल जिला की ओइन ngasi लोसिन करे महोत्सव असिगि मनुंग चना जिला असिगि मफम कुंठा नि थोइत उ सरार लाग म लिसिंग तर मंगा थाकी हंदकी पालन असि रे जिला असिगि ब्लॉक मरी गि मनुंग द सांदेल ब्लॉक ना ख्वाइदकी हेन उ जरा से माइ पाग न थापंगम ब सब डिविजन ओइकी हाइना जिला असिगि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर डॉक्टर एन मुनाल बितेन फुंगदुकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगसे इंडोनेशिया की राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियांटो का जकार्ता टा लेबा प्रेसिडेंशियल पैलेस तक मिफम पंक्तोक तुना लेबा गनी की मरी हेन फगड़ाने बगी मतांग दखने करे मिफम तुर खने की बवा फम सिंह की मनुंग द ललोलिटी सेल थटबा ngak सेल मरीटाइम सिक्योरिटी डिजिटल टेक्नोलॉजी मसुंग कल्चरल एक्सचेंज हेन मपांगल कनखड़ हेन बवा फम यावरी तुंग द लुचिंग बनी न याने से कया सही तुंग नकी केंद्र की हक्सेल मंत्री जे पी नड्डा ने सभापति ओइतुना टीबी मुक्त भारत अभियान की मतांग द अवांग मुथा के मिफम मंगसी न्यू दिल्ली ता पंगथोखरे सरकार ने टीबी लाइना पोमुत मुथा नबा पाखलिबा थौरंग थौसिल छिंग हेनम पांगल कनखड हनबा मंत्रालय सिंग द खंगन करे माय भारत नेशनल सर्विस स्कीम अमसुंग एनसीसी की वॉलंटियर सिंग ना टीबी मुथा नबा पाखलिबा तबक सिंग द मतेंग पांगबिन बसु मंत्री ना आफिल तोखी मिपमतुर लेबर अमसुंग एम्प्लॉयमेंट मंत्री मनसुक मंदाबिया अमसुंग ngaksel राज्य मंत्री संजय सेठ सरुक याखी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट TRI की मपांगल कनखट अनुभव पांडम द नुमित निनी सटक डब जाति ठगी वर्कशॉप मसीदगी उड़ीसा की भुवनेश्वर होकरे केंद्र की ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय ने सिंधु न सटक डब वर्कशॉप असी केंद्र की ट्राइबल अफेयर्स मंत्री ज्वेल ओराम न हुडोखी वर्कशॉप असी डम्यो चनी हेन बने सरुक यारी तरुण द केंद्र की ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय अमसुंग संपूर्ण आनंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का यानवारोल अम सही तो नगनी वर्कशॉप असि पांधोपगी मरुब पांधम दी लेबा गसर लेब TRI की अपुनबा डॉट मैप अम सेम लोनना पाक चौरब लोक सिंग्यान के इंस्टीट्यूशन कल्चरल रिसोर्स सेंटर अमसुंग ट्राइबल सिंग साखुटपगी थौसिल थौरांग सेंफम ओइनबगी दमकतनी FIFA World Cup ki quarter final line up loi gata ba match ani kakta ngari ngasi chana ki ba pre quarter final match ma da Spain a Portugal po panjal ama chino te thoki ngasi ayuk chana ki ba to pa match ma da na Belgium na USA po panjal mari ama da thoki ngasi ni midang pung mapan makhai da Argentina ka Egypt ka ama chung nongyai matuk pung ama makhai ta ba matam da Switzerland ga Colombia ga sana gani paulo chare

0: ताइबंग पाल सिदा सांगा थवाई पानब जीब कया गलोइनना मिओइब आइखोइना हिंगले मिओइबद नाब लैनागी चादो हुमफुदि सांगा दिगी संदोई खुदमोइना रेबीज बर्ड फ्लू अदुबो इचमचमब उपाय सिजनदना लैना कया असिदगी गाथोपंगमगने सासन पाइरोरब मतुंग खुद सासेंगना हमदोपियो चानब सांगा येन चिंगब मुन्न थोंबियो मसखंगदब सान त्रगलमगी सा उरबदि मनाक चंगबीगनो फॉरेस्ट्री नत्रगा वेटरनरीगी मरि लेनब मिओइ सिंग द पाउ पिबियो सा उचेक योकपिरिब सिंग लुना नाना योकपियो आइखोइग तना थानब यात्रब मरुप सिंग असिना मसा मऊ फन हिंगलगा ताइबंग मिओइब आइखोइसु इसा फगने पाउजेनजरिबा रीजनल कोऑर्डिनेटर नेशनल वन हेल्थ प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ जूनोसिस डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी रिम्स इम्फाल
1: मथंगद ताबिरसी पाप फिल्म असिदगी अहिबम श्याम अमदि अरामबम जमुना अनिपुना सखमिनबा इसै सैरेंग बा थांगजम कोरा अमदि सैरांगबा अहिबम श्याम इसै सिबु खनबिरक पमियोय सिंगना सगोल तोंगबा लाइश्रम मखाले गाइदगी सुमन सरजू अमदि सुमति ताबिरसी

केंद्र की हक्सेल मंत्री जेपी नड्डा ना सभापति वजुना टीबी मुक्त भारत अभियान की मतांग दा अवा मुथा के मिफम मंगासी नई दिल्ली ते पंथुक रे सरकार ना टीबी लेना पुमुन मुथन बा पाइकले ब थौरांग थौसिल सिंह हे न मपांगल ककल न बा मंत्रालय सिंह द खान खरे माई भारत नेशनल सर्विस की ममसोंग एनसीसी की वॉलंटियर सिंह ना टीबी मुथन बा पाइकले ब थाबक सिंह दा मतेंग पांगन बसु मंत्री ना अपील तौरी मिफम दुदा लेबर मसोंग एम्प्लॉयमेंट मंत्री मनसुख मंदा बेया मसोंग नाक्सेल राइज मंत्री संजय सेठ सरवियाखी भारत ने भी तरुक सुब प्रोजेक्ट 17 ए इंडिजिनस स्टील्स फ्रिगेट महेंद्रगिरी एफ 38 लाइब थाजनुमित विशाखापट्टनम कमीशन तौरगनी नाक्सेल मंत्रालय ने जहाज से भारत ने भी वारशिप डिजाइन ब्यूरो ना डिजाइन तौनी मेजागोन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड साबनी वेनेजुएला हंदक अनिरक युआर हाकीबदुना सीबगी मसिंग मी लिसिंग चहुम मी लिसिंग अहुम सामगा कुंथ्रामा सुरे अतोप लिसिंग तरातरुक सात्रे निफुना अशोक अपन नंगले युआर हाबादुना मरम होरेगा युम कई किया किंथकी अकाय अतोय थोकीबना मरम होजुना मी लिसिंग तरातरे सनिपान याखै मरी मयु मकई लेहेंत्रे हौजी फाबुदा अते अकाय न ननसिंदुना लेरेंबा मी लिसिंग तरुक सामरी हुमफोनी थोय कनमंगमले फीफा वर्ल्ड कप सरुक यारी बलिबाग सिंह मनुंग द हौजी फाउद बेल्जियम फ्रांस नॉर्वे मोरक्को इंग्लैंड स्पेन क्वार्टर फाइनल संख्रे नसी निमिदांग पुंग मापुन मखाई द अर्जेंटीना ग इजिप्त मसुंग नोंयाई मतुंग पुंग अम्मा मखाई ताबा मतम द स्विट्जरलैंड ग कोलंबिया ग सानगनी पाउलेसरे

0: गीत खुदोल के अरुईबद ताबिरसी लता मंगेशकर अमदी अमिताभ बच्चन अनिपुर सक्मिनब गीत
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं तुम होती तो कैसा होता तुम ये कहती तुम वो कहती तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती तुम होती तो ऐसा होता तुम होती तो वैसा होता मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

दो रास्ते फिल्म के इस गीत के साथ ही हमारी भी मुलाकात शुरू हो गई है। समय हो चुका है 10:36 और 38 सेकंड और आप हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं 100.1 MHz पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, जहां मैं अपनी शुक्ला लेकर आ गया हूं प्यार भरे गीतों का ये गुलदस्ता, नाम है जिसका हर सिंगार। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। ये गीत था रफी साहब और स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और अगला गाना 1960 में आई फिल्म रंगीला राजा से सुधा मल्होत्रा और तलत महमूद का गाया हुआ, असद भोपाली की शब्द रचना और शिवराम कृष्ण का संगीत।

मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, गमे दुनिया से फुर्सत हो गई है। जलील इलाहाबादी की लिखी पंक्तियों जैसा ही प्रेम भाव प्रेम धवन के बोल से सजे इस गीत में भी था, जिसे गाया महेंद्र कपूर और सुमन कल्याणपुर ने और इसे संगीत से सजाया एस एन त्रिपाठी ने। फिल्म का नाम जिंगारो। अगला गीत होगा फिल्म परख से, जिसके गीतकार और संगीतकार दोनों ही रहे रविंद्र जैन, और इसमें आवाज आप सुनेंगे किशोर कुमार और हेमलता की।

फिल्म अपना भी कोई होता से सुलक्षणा पंडित और सुरेश वाडकर की आवाज में एसएच बिहारी का लिखा और चित्रगुप्त के संगीत में पिरोए इस गीत के साथ ही हर सिंगार के आज के सफर में हम बहुत आगे आ गए हैं। लेकिन इसके समाप्त होने से पहले मंजिल फिल्म से मन्ना डे और आशा भोसले का गाया ये गीत बोल मजरू सुल्तानपुरी के और संगीतकार एसडी बर्मन।

हम और आप और एफएम गोल्ड यूं ही मिलकर चलते रहेंगे, लेकिन आज की हर श्रृंगार की यात्रा बस यहीं तक थी। हाँ, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। आगे सुनिए समाचार और मार्केट मंत्रा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृह मंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। आज के अंक में हम बात करेंगे आर्थिक गतिविधियों की और शेयर बाजार पर चर्चा भी करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान हैं आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: और सबसे पहले सुनते हैं अर्जुन से हेडलाइंस।
0: Benchmark domestic stock market indices decline. Sensex drops over 100 points. Nifty settles below 24,400. Most Asian stock market indices end in the negative territory. And India and Indonesia exchange MOUs in areas including critical minerals, defense and emerging technologies.
1: घरेलू शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 100 से अधिक अंक लुढ़का। निफ्टी 24,400 से नीचे बंद हुआ। एशिया के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट देखी गई और भारत तथा इंडोनेशिया ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और उभरती प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: Desh ke pramukh शेयर सूचकांक आज अपनी शुरुआती बढ़त को बरकरार नहीं रख सके और कारोबार के अंत में लाल निशान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 104 अंक गिरकर 78,181 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 32 अंक लुढ़क कर 24,399 पर आ गया। दोनों सूचकांकों में 0.1% की गिरावट आई। विस्तृत शेयर बाजार भी नुकसान के साथ बंद हुए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप सूचकांक में 0.3% की सुस्ती देखी गई और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.5% से अधिक की गिरावट आई। बाजार आज अच्छी शुरुआत के साथ खुले थे और सत्र के अधिकांश समय बढ़त के साथ कारोबार करते रहे, लेकिन कारोबार के अंतिम घंटे में मुनाफा वसूली और वैश्विक स्तर पर कमजोर संकेत मिलने से नुकसान देखा गया।
0: Benchmark domestic equity indices gave up the initial gains and ended on a negative note today. Sensex dropped by 104 points to close at 78,181. Nifty dipped by 32 points to settle at 24,399. Both the stock market indices dropped 0.13%. In the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell 0.3%, while the small-cap 100 index lost more than 0.5%. Earlier, the markets opened on a positive note and traded with gains for most of the session. However, both the stock market indices lost momentum in the final hour of trade, weighed down by profit booking and weak global cues.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 16 कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में ट्रेंड सर्वाधिक 12.4% के नुकसान में रहा। वहीं अडानी पोर्ट्स में 1.6% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 1.5% से अधिक की गिरावट आई। उधर अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनी के शेयरों में HCL टेक ने 3.1%, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस 2.8% तथा टाइटन ने 2.6% से अधिक का उछाल दर्ज किया।
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 20 out of the 25 sectors ended in negative zone. Among the key laggards, capital goods shed over 1.7%, realty fell 1.6% and industrials lost 1.5%. In contrast, focused IT jumped more than 2.2%, IT rose 2.1% and consumer durables added over 0.6%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,633 companies declined, 1,599 companies advanced and 165 companies remain unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 44

0: पैसे मजबूत होकर 94.96 पर बंद हुआ। उधर दुनिया की छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 100.87 पर कारोबार कर रहा था। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बाजार की शुरुआत अच्छी बढ़त के साथ हुई थी, लेकिन आखिरी के घंटे में बिकवाली देखने को मिली, तो आपकी नजर में इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह क्या रही? मुनाफा वसूली या वैश्विक स्तर पर जो संकेत मिले उन पर कहेंगे?
1: देखिए, ज्यादातर मैं समझती हूँ कि अभी चार दिन से बुलिश रन चल रहा है हमारी स्टॉक मार्केट्स में, और ये वजह ये रही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय के जो अंतर्राष्ट्रीय हालात जो हैं वो अच्छे हो गए हैं। थोड़े से कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स खुल गया है, तेल आना शुरू कर दिया है, और जो सरकार ने जो कर्ब्स लगाए थे लिक्विड नेचुरल गैस के ऊपर और LPG के ऊपर, वो उन्होंने हटा दिए हैं। मतलब है कि तेल और गैस जो है वो आराम से आ रहा है। तो ये जो मतलब अच्छी स्थिति है वो दर्शा रहा था स्टॉक मार्केट्स में। आज मेरे ख्याल में प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादातर इस वजह ये है कि एकदम से मार्केट थोड़ा सा गिर गया है, लेकिन आउटलुक क्योंकि अभी भी अच्छा है, और जैसे आपने खुद ही कहा कि जो ये प्रॉफिट बुकिंग एंड में इसका has brought down the market.
2: Sushma, while there was profit booking in the last hour of trade on the Sensex and Nifty, we saw short covering in the tech sector, which has really taken a beating in terms of valuation.
1: Yes.
2: And we are seeing that AI, artificial intelligence, is a major component. It's a major tool in the performance of global companies worldwide right now. So where do you see IT companies right now? Do you see this trend continuing, or valuations going up, or is it just value buying right now?
1: I think valuations should go up in the long term, because you know this dip that has happened in recent times is largely because of perception. Perception being that you know, in India we don't have large language models, we are not you know, big AI players, and therefore our IT companies will not be able to cope in the new scenario. You know, the kind of services exports that they have been doing, the kind of contracts that they have been getting, but in fact that's as I said, that's a perception. And the fact is that these same IT companies have been able to or will be able to rather utilize the let's say the fallout of the availability of these LLMs everywhere. You do have, I mean, it would be wonderful if India had LLMs, but we don't. But we are very good at application. And that's where the IT companies are going to come in. They are going to provide IT services. And in fact, actually, it's surprising, during this period when share values had gone down, actually the IT companies had been doing very well financially because of rupee depreciation. With rupee depreciation, there's exports, you know, they are responsible for the services exports of the country. And therefore, the profitability of these companies has been rising exponentially.
2: Speaking about the rupee depreciation earlier, which IT companies have traditionally exploited because their earnings are in the foreign exchange, in the US dollar. Today, the rupee appreciated by 44 paise. We know that all the currencies have taken a beating against the US dollar.
1: Yeah.
2: The US dollar index is above 100. It's 100.87. Was there any kind of intervention by the central bank in the valuation of the rupee versus the dollar, or is it just demand and supply? Because even if you look at the equity markets right now, the FIIs, FPIs were net buyers to the tune of only 393 crore rupees, and DIIs were the net sellers of 383 crore rupees. So was there central bank intervention today?
1: No, well, of course, you know, we really don't know whether there is central bank intervention. But the central bank has been intervening, but it has been intervening cautiously. If it had been intervening in a major way, we would not have had this relentless devaluation or depreciation of the rupee. But I think where the central bank has played a role has been to ensure that there is not a precipitous fall of the rupee. Because as most observers have been saying, that it is perfectly fine for the rupee to depreciate, to come down to the level that is accepted, by the financial markets, and there's really no harm. And of course, we just talked about the fact that exports, IT exporters are benefiting from it, and other merchandise exporters also. So that is fine now, but the central bank therefore has allowed this depreciation to take place and has not made any major interventions. But certainly, as I said, it has slowed down the pace. Right now, I don't think that they are trying to push to ensure that there is rupee appreciation. I think that is something that is happening. Naturally, it's one of the factors, because one of the factors is definitely the fact that oil prices have come down. It's quite a relief to the Indian economy, to the government, obviously, that they have come down to pre-war levels.
0: सुषमा, अगर मार्केट को थोड़ा सा फिर से एक बार देखें तो आज कैपिटल गुड्स की बात करें, रियल्टी की बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत गिरावट हमें देखने को नजर आई है। तो क्या ये अभी हाल फिलहाल किसी कमजोरी मान सकते हैं, या फिर आगे भी इन सेक्टर्स में ऐसे ही दबाव बने रहने की आशंका आपको लगती है?
1: देखिए, कुछ सेक्टर्स में दबाव तो बनेगा। अब रियल्टी सेक्टर एक है जिसके बारे आपने बात की, और कैपिटल गुड्स है। खैर, ये तो पोटेंशियली पॉजिटिव सेक्टर्स है, और रियल्टी सेक्टर का रिवाइवल हाल ही में हुआ है, तो मेरे ख्याल में ये शॉर्ट टर्म वीकनेस होगा, और आगे वाले दिनों में शायद ये ठीक हो जाएगा।
2: Sushma, you mentioned about global cues, oil market being one of them, the Strait of Hormuz opening up, and clearly that 60-day window is vital for the flow of oil and gas, and even other goods like sulfur for the manufacture of fertilizer. What about steel? Because right now, experts are giving the opinion, like yourself, that there's going to be a glut, a surplus of steel, which is why the prices of steel and steel products will come down. Nifty Metal actually fell by 1.1% today. What are the surprise areas we're likely to see in the markets now?
1: As far as steel is concerned, there may be a glut of steel per se, but India needs certain specialized varieties of steel, which actually it is not manufacturing right now, and therefore it is having to import these. And these are the steels that are required for moving into the area of electric batteries and electrification, which we are seeking to do in terms of renewable energy. So there are, you may get steel, there are steels and steels. So specialized steels is something that India needs to probably right now import, and probably to manufacture ultimately, because that's an area where people are now talking about as being somewhat a weakness in our economy, and we have to look at ramp up manufacturing here.
2: Along with that, there is also moves to substitute copper with aluminium, because aluminium is lighter, and the design of manufactured components, especially in the EV space, is being looked at very seriously. That is another way of bringing down the price of copper, which has actually gone up, because aluminium is still fairly affordable right now. So do you see a lot of changes right now in terms of valuation in the metal sector?
1: Yes, definitely. I mean, metals is going to be a very, very important sector. I mean, you talked about copper, aluminum, all the metals right now in recent times, the prices have gone up, because the requirement of all these metals in high-tech products, in components, whether it is, it may be silicon chips, you may need very tiny quantities of these metals, but these are required. And of course, copper prices have gone up. So yes, there would be effort to try and seek alternatives, like in the case of aluminum. Aluminum is an area that India has sufficient production, and that would be certainly helpful if we can do that, if we can replace copper with aluminum in a lot of manufacturing areas.
0: सुषमा, आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में भी गिरावट का रुख हमें देखने को मिला है, तो इस स्थिति में जहां पर हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में एक थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेंड हमें देखने को मिला है, तो ऐसे में निवेशकों को क्या ध्यान रखना चाहिए इन चीजों पर?
1: देखिए, निवेशकों को ये देखना चाहिए, ये सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप में भी नहीं, पर खैर मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये ब्लू चिप शेयर्स नहीं है, ब्लू चिप कंपनीज नहीं है, इनमें उनको आगे की लॉन्ग टर्म पोटेंशियल जो है कि जिस इंडस्ट्री में है वो देखना है. और ये जो जो स्टॉक जो आपने चुना है इसका इनकी जो मार्केट है वो कैसी है और प्राइस अर्निंग रेशियो, ये जो चीजें हैं थोड़ी सी डिटेल में उनको देखना पड़ता, देखना चाहिए और लॉन्ग टर्म इसका पर्सपेक्टिव होना चाहिए. अगर आप खैर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप रेगुलर रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको मेरे ख्याल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखकर ही एक कंपनी चुननी चाहिए.
0: सही समय है ये. सही समय है ये.
1: देखिए हर समय सही है. इस वक्त तो मैं समझती हूँ कि इंडिया मार्केट मार्केट लगता है कि अभी बढ़ने वाला है, सारे एनालिस्ट यही कहते हैं. तो ये पोटेंशियल हमारी मार्केट का बहुत ज्यादा है, असेसमेंट यही चल रही है इस वक्त.
0: और एशियाई बाजारों की हम बात करें तो प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में आज गिरावट देखी गई. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 4.9% नीचे आ गया जिसमें चिप शेयरों में बड़ी गिरावट आई. कारोबार के पहले सत्र में कोस्पी 8% से अधिक गिर चुका था. ताइवान का ताइएक्स आज 2.3% लुढ़क गया. वहीं जापान का निक्केई 2.1% और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.2% गिर गया. हांगकांग का हैंगसेंग भी 0.5% नीचे आ गया. सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक ने 1.6% की बढ़त दर्ज की. सुषमा जी, आज दक्षिण कोरिया कॉस्पी में जो गिरावट देखी गई एक बड़ा संकेत इसे माना जा रहा है अन्य मार्केट्स के लिए, तो आपको क्या लगता है कि इस गिरावट का असर थोड़ा लंबा जाएगा या बस हाल फिलहाल के लिए कह सकते हैं सही है?
1: तो ये वो मुश्किल कहना है कि वो लंबा जाएगा कि नहीं, पर मेरे ख्याल में ये जो इस वक्त एआई की जो सारी सारी की जो समझ लीजिए कंफ्यूजन जो है एआई के ऊपर, और एआई खैर चिप्स उनके साथ एआई के साथ बहुत लिंक्ड है, एआई और चिप्स इकट्ठा ही जाता है. तो और साउथ कोरिया जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट क्रिटिकल सेंटर है चिप मैन्युफैक्चर के लिए साउथ कोरिया और ताइवान. तो हमें ये मेरे ख्याल में ये लंबा तो मुझे नहीं लगता जाएगा क्योंकि ये इस वक्त का जो कंफ्यूजन है वो जब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में खैर एआई स्टॉक्स तो इतने बड़े हुए हैं, लेकिन अभी जो कंफ्यूजन मैं बात कर रही हूँ चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड इश्यूज अभी भी सुलझाई नहीं गई हैं, अभी भी वो प्रॉब्लम्स हैं कि कौन से चिप्स अमेरिका जाने देगा चाइना तक, और चाइना अपने कर्ब्स अभी भी उन्होंने लगाए हुए हैं. तो ये टेंशन्स अभी चल रही हैं और ये मेरे ख्याल ये दीज आर सॉर्ट ऑफ एक्सटेंडिंग टू अदर कंट्रीज.
2: एट साउथ कोरियास कोरिया एक्सचेंज कॉस्पी दैट माय कोएंकर हैज आस्क्ड यू अबाउट इट प्लंज्ड 4.9% एंड दिस इज अ वेरी market where Samsung second quarter earnings have the revenue has exceeded Nvidia's 171 trillion US dollars is the revenue of Samsung in its second quarter. Its net profit has gone up by 19x. How does this happen in a market like Korea, developed country, where there is such a sharp correction?
1: But I don't think we should. We must remember that all markets are susceptible to these kind of things, because if there's any bad news, all markets like the Indian market are sentiment driven, and South Korea is no exception. So if there was some kind of perception that there would be some damage to the chip industry, to the chip sector, the problems that they are facing, which I talked about, both Korea, Taiwan, US and China, all this confusion that is going on and the problems that they are facing. So these are perceptions, and markets are generally sentiment driven. So yes, this can happen. And of course, Samsung, the profitability that you're talking about is really amazing, even better than Nvidia. For us, Samsung and companies like LG, the way they have entered the Indian markets is also so amazing that we sort of, the Indian consumer more or less thinks of Samsung and LG as Indian companies. They don't think of them as Korean companies. So this is the achievement of the Korean conglomerates. And definitely, as you say, profitability levels are amazing. But every market is sentiment driven, and these things happen everywhere.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया की राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने आज जकार्ता में हुई वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. दोनों नेताओं की उपस्थिति में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, कृषि, इस्पात और उभरती प्रौद्योगिकी शामिल हैं. संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिज और इस्पात के क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सहमति व्यक्त की है.
3: आज के युग में टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन रिजिलियंस बहुत मायने रखती है. क्रिटिकल मिनरल्स और स्टील के क्षेत्र में सप्लाई चेन को अधिक मजबूती देने के लिए भी अहम समझौता हुआ है. हमारी कंपनीज के बीच स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर साझेदारी की नई शुरुआत हो रही है.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली बहुत ही जल्द इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम से एकीकृत हो जाएगी. इससे कारोबार करना आसान होगा और यात्रा करने में भी सुविधा होगी. सुषमा, ये इस यात्रा से जुड़े मेरे दो सवाल है. पहला तो ये, प्रधानमंत्री की इस यात्रा से आर्थिक दृष्टि से भारत को किस तरह से लाभ मिलने वाला. दूसरा, यूपीआई जो हमारी भुगतान प्रणाली लगातार अपना दायरा बढ़ाती जा रही है, बहुत से देशों के साथ हमारा एक टाई अप हो चुका है इसे लेकर के, अब इसका आप भविष्य कैसे देखते हैं?
1: देखिए, जो पहला सवाल है कि इसमें जो आर्थिक इसके जो इकोनॉमिक टाई अप जो है इंडोनेशिया के साथ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं. एक क्रिटिकल मिनरल्स है, कृषि है, स्टील है और नई टेक्नोलॉजीज हैं, ये सारी इसमें आती है. और सबसे बड़ी चीज़ डिफेंस की भी बात कर रहे हैं वहाँ पर. तो इंडोनेशिया के साथ हमारे खैर बहुत पुराने रिलेशंस हैं और बहुत लंबे अरसे से इंडोनेशिया के साथ हैं. और आगे की सबसे बड़ी चीज़ जो आपने दूसरा सवाल था, यूपीआई था. अगर हम यूपीआई के इंटरफेस के साथ हम इंडोनेशिया की पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करते हैं, तो एक और देश हमारी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रेट हो जाएगा. यूएई का खैर है, ये मलेशिया के साथ हो गया है और मेरे ख्याल सिंगापुर के साथ भी बातचीत हो रही है, लेकिन यूएई में मेरे ख्याल आप वहाँ जाके यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं. हमारा जो इंडिया स्टैक है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकग्नाइज हो रहा है और इस्तेमाल हो रहा है.
2: Local currency transactions, LCT, de-dollarization moves?
1: Yes, they are de-dollarization moves, certainly, because the more we try and utilize UPI, the more we try and use our own currencies, the less we have to rely on the dollar and the less we suffer the fluctuations of the dollar.
2: In more news, the Emergency Credit Line Guarantee Scheme, ECLGS 5.0, launched in May this year, has crossed more than 4 lakh guarantees, with the guaranteed amount reaching over 1,55,000 crore rupees. MSMEs have emerged as the biggest beneficiaries of the scheme, with 98% of the guarantees issued going to the sector, while 82% of the total guaranteed amount has also been extended to MSMEs. The finance ministry said that the scheme is delivering fast, large-scale liquidity support to businesses affected by the West Asia geopolitical situation. And let's now move on to the crude oil market. Global crude oil prices rose today as reports of attacks on vessels near the Strait of Hormuz revived fears of supply disruptions. Brent crude was trading nearly 0.9% up at $72.61 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% up at $69.01 per barrel when reports last came in. The 60-day window, which also includes reparations to Iran and of course a flow of oil and gas and other commodities through the Strait of Hormuz without toll being imposed, how do you see that holding up?
1: Well, we don't really know how well it's going to hold up, but the fact is that crude oil prices have come down. That's the most important thing for India. I mean, we import 85% of our requirements, and if the prices are coming down to $72 or $73 per barrel, as you know, today you're saying that they have gone up, but they've only gone up to about, you know, it's still less than $73 per barrel. And this is something that is manageable for India. And now the assessment is that going forward for this year, probably the average crude price is expected to be only about $77 per barrel. And next year it would be even less, maybe $74 or $75 per barrel. So the assessment now is that, you know, we have so much of crude oil in the market and demand is going down because people like, you know, countries like China are going in for electrification in such a huge way. Their demand is going down. And India also is now going to try very hard. We just talked about

0: electrification of steel. So that is the going to be a problem for the oil industry, but good for India.
1: Let's move on to the bullion market. Now, in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.9% down at 1,46,130 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.2% down at 2,31,220 rupees per kilogram a short while ago.
2: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 0.8% नीचे आकर 1,45,798 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 2% की गिरावट के साथ 2,31,354 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। सुषमा जी, सोने और चांदी पर आपके क्या कमेंट्स होंगे?
0: देखिए, अब सेफ हेवन का जो सिलसिला है, नॉर्मली इट्स अ सेफ हेवन मेटल गोल्ड, और जो अब वॉर का लगता है कि अंत होने वाला है, तो धीरे धीरे सोने का भी दाम कम हो रहा है।
1: Once again, sanctions against Russia has played a role here. The Ukraine has upped the ante against Russia. Do you see that changing?
0: Well, that's a war. I think that is just doesn't seem to be going on in a very incremental fashion. And I think, unfortunately for Ukraine, the interest of the world is now focused on Iran.
1: Thank you so much, Sushma Ramchandran, for being with us on Market Mantra today.
0: Thank you.
1: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices decline. Sensex drops over 100 points. Nifty settles below 24,400. Most Asian stock market indices end in negative territory. And India and Indonesia exchange MOUs in areas including critical minerals, defense and emerging technologies. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
2: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

गीत फिल्म के इस गीत में जहां लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी मीत को बुला रहे थे, इसे आपने सुना भी कार्यक्रम गीत मेरे मन मीत के अंतर्गत और 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल में मैं अभिनीत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।

फिल्म कभी कभी से मुकेश के गाए इस गीत को क्रिकेट प्रेमी भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से जोड़ के भी देखते हैं, जिन्हें ये काफी पसंद है और उनका आज जन्मदिन भी है। तो 7 जुलाई की तारीख बीतने से पहले हम उन्हें एक बार जन्मदिन की बधाई दे देते हैं और इसके साथ ही गीत मेरे मनमीत का ये सफर आज यहीं समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। अवनीत शुक्ला को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं।

0: नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश राज्य मंत्री डॉ. कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ऐसे एआई भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है जो सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी हो। उन्होंने जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर यूएन ग्लोबल डायलॉग की हाई लेवल प्लेनरी को संबोधित किया। डॉ. सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि एआई गवर्नेंस मानव केंद्रित, समावेशी और भरोसे पर आधारित होनी चाहिए। भारत और रवांडा ने सैनिक ट्रेनिंग, संयुक्त सैनिक एक्सरसाइज, मेडिकल सहयोग और रक्षा उद्योग के क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई है। ये निर्णय नई दिल्ली में दो दिनों तक चली दूसरी संयुक्त रक्षा कोऑपरेशन कमेटी की बैठक के दौरान लिया गया। दोनों पक्षों ने सहमत कार्यबिंदुओं के लिए समय सीमा के साथ एक कार्यान्वयन योजना को भी अंतिम रूप दिया। सरकार ने स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया नाम के एक संगठन के झूठे दावों के बारे में लोगों को सावधान किया है। ये संगठन दावा कर रहा है कि उसे युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मान्यता मिली हुई है। प्रेस सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा है कि यह दावा गलत है और साफ किया है कि मंत्रालय ने इस संगठन को कोई मान्यता या संबद्धता नहीं दी है। वायनाड के विपड्डी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कल विभिन्न क्षेत्रों पर अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में हुई। डॉ. मिश्रा ने निर्देश दिया कि समग्र स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने मिस्र को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development, not expansionism.
0: Bharat, vistarvad nahi, vikasvad ki.

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

अकेले हम ही शामिल नहीं हैं इश्क के जुर्म में, अकेले हम ही शामिल नहीं हैं इश्क के जुर्म में। जब नजरें मिली थी ना तो तुम भी मुस्कुराए थे।

अब जिंदगी में कोई आए या जाए कोई परवाह नहीं, अब जिंदगी में कोई आए या जाए कोई परवाह नहीं, बस एक तेरा साथ मेरे जीने के लिए काफी है।

हम वफा की हर हद पार कर देंगे तुम्हारी चाहत में, हम वफा की हर हद पार कर देंगे तुम्हारी चाहत में, तो मांग कर तो देखो हम खुद को भी हार देंगे तुम्हारी चाहत में।

प्यार उसे करो जो तुमसे प्यार करे, प्यार उसे करो जो तुमसे प्यार करे, खुद से भी ज्यादा तुम पे एतबार करे। तुम बस एक बार कहो कि रुको दो पल, तुम बस एक बार कहो कि रुको दो पल, और वो उन दो पलों को तुम्हारा इंतजार करे।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। अगले घंटे फिर आपसे मुलाकात होगी कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो

0: सुबियांतों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ऐसे एआई भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है जो सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी हो। उन्होंने जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर यूएन ग्लोबल डायलॉग की हाई लेवल पैनल को संबोधित किया। श्री सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि एआई गवर्नेंस मानव केंद्रित, समावेशी और भरोसे पर आधारित होनी चाहिए। भारत और रवांडा ने सैनिक ट्रेनिंग, संयुक्त सैनिक एक्सरसाइज, मेडिकल सहयोग और रक्षा उद्योग के क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई है। ये निर्णय नई दिल्ली में दो दिनों तक चली दूसरी संयुक्त रक्षा कोऑपरेशन कमेटी की बैठक के दौरान लिया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं, तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। मंत्री ने भरोसा जताया कि उपभोक्ताओं के लिए स्थिति अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई बढ़ रही है। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने ये बात कही। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमता और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू कर रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान इस योजना के विभिन्न घटकों के तहत 110,000 से अधिक लाभार्थियों को सहायता दी गई है। इसमें शिक्षा, आजीविका और स्वास्थ्य से जुड़ी पहलों को शामिल किया गया है। वायनाड के मेपर्डी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में आज रात खेले जा रहे तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। इसके जवाब में भारत की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 76 रन पर सिमट गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development and not expansionism.
2: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai. और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: The Prime Minister said the relationship between India and Indonesia is centuries old and shares similar democratic values, mutual trust and a common vision for the future. Mr. Modi also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups and innovation to benefit people in both the countries. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration.

दोस्तों समय हुआ है 1:11 और 3 सेकंड और ये समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू, स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

धड़कनों से पूछो कि वो क्या गाती हैं, धड़कन से पूछो कि वो क्या गाती हैं, इस दिल पर तो बस हर पल वो तुम्हारा नाम लिख जाती हैं।

सादगी तुम्हारी देखकर तो कुदरत भी दीवानी है, सादगी तुम्हारी देखकर तो कुदरत भी दीवानी है, तुम्हें देख कलियों का मुस्कुराना तो बस एक छोटी सी निशानी है।

अब और ना आजमाओ मेरे सब्र को तुम, अब और ना आजमाओ मेरे सब्र को तुम, चले आओ कि ये बेतनहाई डराने लगी है।

दुआ है कि वक्त तुम्हारे सामने थोड़ा ठहर कर गुजरे, दुआ है कि वक्त तुम्हारे सामने थोड़ा ठहर कर गुजरे और ज़िंदगी का हर लम्हा तुम्हें एक नई मुस्कुराहट दे जाए।

0: मेरी दीवानगी की कोई हद ना पूछो साहेब, मेरी दीवानगी की कोई हद ना पूछो साहेब, मैं तो हवाओं से भी तुम्हारा पता पूछकर मुस्कुरा देता हूँ।
1: मुबारक हो सबको समाये सुहाना,

दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और 2:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ऐसे एआई भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है जो सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी हो। उन्होंने जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर यूएन ग्लोबल डायलॉग की हाई लेवल पैनली को संबोधित किया। डॉक्टर सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि एआई गवर्नेंस मानव केंद्रित, समावेशी और भरोसे पर आधारित होनी चाहिए। भारत और कोस्टारिका ने आपसी व्यापार और निवेश संबंधों की समीक्षा करने और आर्थिक सहयोग के नए रास्ते तलाशने के लिए संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की पहली मीटिंग वर्चुअल माध्यम के जरिए की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव विमल आनंद और कोस्टारिका की फॉरेन ट्रेड की जनरल डायरेक्टर एड्रियाना कास्ट्रो ने की। बैठक के दौरान व्यापार और निवेश नियमों पर विचार साझा किए गए तथा आर्थिक जुड़ाव को और बढ़ाने के मौकों पर चर्चा की गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। मंत्री ने भरोसा जताया कि उपभोक्ताओं के लिए स्थिति अच्छी बनी रहेगी क्योंकि दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई बढ़ रही है। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने ये बात कही। वायनाड के मेपर्डी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, माहे और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 2 दिनों में उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। नॉटिंगम के टेंट ब्रिज में खेले जा रहे तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 201 रन बनाए जिसके जवाब में भारत की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 76 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development and not expansionism.
1: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye hum Bharat mein kehte hain, sabka saath, sabka vikas. Aaj main yahi mantra, yahi bhavana lekar, Indonesia ke aap sabhi sansad sadasyon ke beech aaya. भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है.
2: The Prime Minister said the relationship between India and Indonesia is centuries old and shares similar democratic values, mutual trust and a common vision for the future. Mr. Modi also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups and innovation to benefit people in both the countries. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Mr. Modi was conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, by President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has said that a new chapter has been added to India's education sector with the approval for the Indian Institute of Management IIM Bangalore to establish an overseas campus in Indonesia. The proposal was approved by Prime Minister Narendra Modi during his visit to Indonesia. He added that the establishment of an overseas campus of such a prestigious institution marks a significant step towards globalizing India's knowledge traditions and education system. Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari said that ethanol blending program is a scientifically proven initiative that has delivered significant economic and environmental benefits. Addressing the Viksit Bharat Conclave in New Delhi yesterday, Mr. Gadkari defended the center's ethanol blending program, asking critics to show even one vehicle with issue due to the mixed fuel. He asserted that no such incident has taken place. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar stated that the India-Bahrain cooperation continues to deepen. Dr. Jaishankar concluded his two-day visit to Bahrain last evening. During the visit, Dr. Jaishankar had an audience with Bahrain's King Hamad bin Isa Al Khalifa in the presence of Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. During these meetings, the External Affairs Minister conveyed the greetings of President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi, and reaffirmed India's commitment to further deepening the long-standing and friendly bilateral partnership with Bahrain. Union Home Minister Amit Shah launched the mission to plant 70 lakh saplings in Delhi under the Ek Ped Maa Ke Naam Abhiyan to increase the green cover in the national capital. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the central government and the Delhi government has resolved to fully develop 6,300 hectares of green rich area into forest land over the next 4 years and ensure its protection. Delhi Chief Minister Rekha Gupta said over 12 lakh saplings will be distributed free of cost and appealed the citizens to actively participate in the campaign. The India Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Uttar Pradesh, Kerala, Mahe and Jammu and Kashmir and Ladakh for the next 3 to 4 days. Similar conditions are expected to prevail over North Interior Karnataka, Saurashtra, Kutch, Vidarbh, Rajasthan and parts of Northeastern region during the next 2 days. And in men's cricket, England defeated India by 125 runs in the third T20 international at Trent Bridge in Nottingham tonight. And that is the end of this news bulletin.

दोस्तों, आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आपने ट्यून किया है और अब सफ़र है रात सुरमई का। मैं अंजू एक बार फिर से आप सभी का करती हूँ बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और शुरुआत कुछ इन अल्फाज के साथ। न जाने कैसी ये साजिश है इन बरसात की बूंदों की, न जाने कैसी ये साजिश है इन बरसात की बूंदों की, कि मेरा हर ख्याल मोड़ दिया तुम्हारी ही गलियों की तरफ।

इन मदहोश हवाओं ने आज सारी हदें तोड़ दी हैं, इन मदहोश हवाओं ने आज सारी हदें तोड़ दी हैं, चुपके से आकर मुझसे ही तुम्हारा पता पूछ रही हैं।

दोस्तों, हमारे जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उन्हें हम बता दें, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। मैं हूं आपके साथ अंजू और कार्यक्रम है रात सुरमई।

तुमको जिस कदर छाए हो मेरे इन ख्यालों पर, तुमको जिस कदर छाए हो मेरे इन ख्यालों पर, कि अब खुद से बात करूं तो यकीन मानो तुम्हारा ही जिक्र आता है।

तुम्हारी ये अदाएं भी जैसे कोई पुरानी नज्म है, तुम्हारी ये अदाएं भी जैसे कोई पुरानी नज्म है, जितनी बार भी सुनो हर बार एक नया मुकाम देती हैं।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अब वक्त आ गया है चलने का और 3:10 से हमराही का सफर लेकर आएंगे आपके साथ अर्जित पांडे। मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही किसी न किसी मोड़ पर। अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि। और भी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान विंटांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। पाकिस्तान में दो वर्ष पहले सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा आपातकाल घोषित किए जाने के बावजूद 2 करोड़ से अधिक स्कूली बच्चे अभी तक शिक्षा व्यवस्था से वंचित हैं। इससे पाकिस्तान नाइजीरिया के बाद विश्व में स्कूली बच्चों को शिक्षा से वंचित करने वाला दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने ये बात कही। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कल हरियाणा के विभिन्न जिलों में ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी से जुड़े 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करेगा। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने इस वर्चुअल सुनवाई की अध्यक्षता करेंगे। आयोग ने कहा है कि संबंधित अधिकारी अब तक की कार्रवाई की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे। इसमें बंधुआ मजदूरों की पहचान, उन्हें मुक्त कराए जाने और असंगठित श्रमिकों के लिए बनाए गए ई श्रम पोर्टल पर उनके पंजीकरण की स्थिति शामिल होगी। वायनाड के मेपर्डी में कल्लाडी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, माहे और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 2 दिनों में उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। नॉटिंगहम के ट्रेंट ब्रिज में खेले जा रहे तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 201 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 76 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development and not expansionism.
1: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है
2: Mr. Modi also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups, and innovation to benefit people in both the countries. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. The two leaders also witnessed the exchange of Memoranda of Understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Mr. Modi was conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia by President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has said that a new chapter has been added to India's education sector with the approval for the Indian Institute of Management IIM Bangalore to establish an overseas campus in Indonesia. The proposal was approved by Prime Minister Narendra Modi during his visit to Indonesia. He added that the establishment of an overseas campus of such a prestigious institution marks a significant step towards globalizing India's knowledge traditions and education system. Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari said that ethanol blending program is a scientifically proven initiative that has delivered significant economic and environmental benefits. Addressing the Viksit Bharat Conclave in New Delhi yesterday, Mr. Gadkari defended the center's ethanol blending program, asking critics to show even one vehicle with the issues due to the mixed fuel. He asserted that no such incident has taken place. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar stated that the India-Bahrain

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:10 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में गाया हुआ एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

रोका कई बार मैंने, कोशिश करिए कि कोई बिना बात के नाराज ना हो, कोशिश करिए कि कोई बिना बात के नाराज ना हो, रिश्ते सभी से आपके हमेशा शानदार ही हों, हो जाए कोई नाराज तो उसे जरूर मनाइए, हो जाए कोई नाराज तो उसे जरूर मनाइए, पर कभी आप हो नाराज तो उसे भी इस बात का एहसास जरूर हो। 3:17 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही।

0: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
1: जरा मैं भी सुनो।
0: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
1: तुमसे नहीं।

0: मैंने भी ख्वाब सा देखा है।
1: कहो, तुम भी कहो।
0: खुद पे इतरा तो न जाओगे?
1: नहीं, खुद पे नहीं।

कोई हो या ना हो मेरे पास, कोई हो या ना हो मेरे पास, पर ये रात तो है मेरे साथ। दिन में बहुत शोर है, दिन में बहुत शोर है, पर ये रात तो है बहुत ही शांत। हर कोई यहाँ सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है, हर कोई यहाँ पर सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है, सिर्फ ये रात है जो मुझे सुनती है तसल्ली के साथ। बात जो मैं किसी से नहीं कर पाता, बात जो मैं किसी से नहीं कर पाता, वो बात भी कर लेता हूँ इस रात के साथ, क्योंकि ये रात है सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ। और आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी अर्चित के साथ। 3:24 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

3:30 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। इस कदर हम थे तन्हा कि तन्हाइयों ने खुद ही मुझसे दोस्ती कर ली। इस कदर हम थे तन्हा कि तन्हाइयों ने खुद ही मुझसे दोस्ती कर ली। घूम रहे हैं अब तन्हाइयों के साथ दिन और रात हम, घूम रहे हैं अब तन्हाइयों के साथ दिन और रात हम, और लोग समझ रहे हैं हम आज भी तन्हा हैं। 3:36 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

किसी भी चीज की कीमत तब तक ही होती है जब तक वो हमें हासिल नहीं होती है। हासिल हो जाए फिर कहाँ उसकी कोई कीमत होती है। हासिल है जो उसे संभाल कर रखिए, हासिल है जो उसे संभाल कर रखिए। जो आपको मिला है उसकी कीमत किसी के लिए आज भी बहुत होती है। 3:43 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

मिजाज हमारे तुम यूं ना समझ पाओगे, मिजाज हमारे तुम यूं ना समझ पाओगे, एक दो बार मिलकर तुम मेरे लिए क्या ही राय बनाओगे, समझना है हमें तो आओ कभी फुर्सत से बैठें, समझना है हमें तो आओ कभी फुर्सत से बैठें, एक बार जो समझ गए तो फिर कभी ना भूल पाओगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। जर्मनी के ब्रेमेन में बलूच नेशनल मूवमेंट ने बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने पाकिस्तान के अधिकारियों पर बलूच लोगों के खिलाफ अत्याचार करने का आरोप लगाया। बलूच नेशनल मूवमेंट ने पड़ोसी देशों, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों से बलूचिस्तान की बिगड़ती स्थिति पर ध्यान देने और वहां के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाने की अपील की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने लद्दाख में सीमा सड़क संगठन की विभिन्न परियोजनाओं में निधि के दुरुपयोग से संबंधित 4 आपराधिक मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बताया कि उसने बीआरओ, लद्दाख के एक सहायक अभियंता और कारगिल से 2 श्रम आपूर्ति एजेंटों को गिरफ्तार किया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झारखंड से 2 मीट्रिक टन आम्रपाली आम का व्यावसायिक निर्यात दुबई के लिए कराया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये आम झारखंड के गुमला और देवघर जिलों की महिलाओं द्वारा संचालित 3 किसान उत्पादक कंपनियों से खरीदे गए हैं। इन कंपनियों का विकास बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये निर्यात जनजाति समुदायों और महिला किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नॉटिंघम के टेंट ब्रिज में तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। इसके जवाब में भारत की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 76 रन पर सिमट गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, माहे और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिनों में उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 4:10 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा। सिर्फ हैसियत देखकर बात ना कीजिए, सिर्फ हैसियत देखकर बात ना कीजिए, थोड़ा इंसान के अंदर भी झांक लीजिए। बाहर से तो सारे मकान ही सुंदर दिखते हैं, बाहर से तो सारे मकान ही सुंदर दिखते हैं, बुनियाद कितनी मजबूत है पहले वो पता कीजिए। दिल से अच्छा हो इंसान वही जरूरी है, दिल से अच्छा हो इंसान वही जरूरी है, सिर्फ सुंदर चेहरों पर जल्दी विश्वास ना कीजिए। जुड़िए किसी से तो फिर दिल से जुड़िए, जुड़िए किसी से तो फिर दिल से जुड़िए, सिर्फ दिखावे के लिए अब दोस्ती ना करिए।

लता मंगेशकर जी की आवाज में तुम ही मेरे मंदिर। ता उम्र भटकते रहे मंजिलों की तलाश में, ता उम्र भटकते रहे मंजिलों की तलाश में, मिली जब मंजिल तो पता चला असली सफर तो अब शुरू हुआ है, अभी तक तो सिर्फ भटक ही रहे थे। 4:18 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: कोशिशें तो आखिरी तक कीजिए सफल होने की, कोशिशें तो आखिरी तक कीजिए सफल होने की, सफलता मिली तो ठीक वरना तजुर्बा तो मिल ही जाएगा। चार बजकर 24 मिनट हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अलचित के साथ।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

किशोर कुमार जी की आवाज में ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत। जीवन में कोई भी चीज पूरी तरह से बेकार नहीं होती है, बेकार से बेकार चीज भी कभी न कभी किसी न किसी के काम आ ही जाती है। घड़ी चाहे बंद ही क्यों ना पड़ी हो, घड़ी चाहे बंद ही क्यों ना पड़ी हो, सारा दिन में एक बार सही समय जरूर बताती है। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

उतार चढ़ाव तो जिंदगी में लगा ही रहता है, उतार चढ़ाव तो जिंदगी में लगा ही रहता है, बस आपको है इसे ठीक से समझना। जब चढ़ रहे हो सफलता के शिखर पर तो कभी घमंड ना करना, और जब उतर रहे हो तो थोड़ा संभल कर चलना। 4:42 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

4:47 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो विश्वास अपने पैरों पर रखो रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो विश्वास अपने पैरों पर रखो जाना खुद ही पड़ेगा आपको चलकर ये रास्ते आपको कहीं नहीं पहुंचाते। 4:52 हो चुके हैं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा।

4:56 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बहरीन के बीच सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन की यात्रा के दौरान क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा की मौजूदगी में बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने बहरीन के साथ द्विपक्षीय साझेदारी को और गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। डॉक्टर मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। संवेदनशील जिलों में पीने के पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि भारत ने कूटनीतिक बातचीत, समय पर नीतिगत कदम, घरेलू उत्पादन बढ़ाने और अलग अलग स्रोतों से तेल आयात करने जैसे उपायों से ऊर्जा क्षेत्र में आई सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वैंकूवर में खेले गए मैच में दोनों टीमें निर्धारित समय में कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development and not expansionism.
1: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है
2: Mr. Modi also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups, and innovation to benefit people in both the countries. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. The two leaders also witnessed the exchange of Memoranda of Understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Mr. Modi was conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia by President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has said that domestic petrol and diesel prices are expected to move in a positive direction if international crude oil prices remain stable or decline. The minister expressed confidence that the outlook for consumers remains favorable as global oil and gas supplies continue to expand. Addressing the Viksit Bharat Conclave 2026 in New Delhi, Mr. Puri said, India successfully weathered one of the most challenging global energy disruptions in recent decades through a combination of diplomatic engagement, timely policy interventions, enhanced domestic production, and diversified imports. He said the country's experience demonstrated the importance of long-term energy reforms in ensuring energy security. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has stated that the India-Bahrain cooperation continues to deepen. Dr. Jaishankar concluded his two-day visit to Bahrain yesterday. During the visit, Dr. Jaishankar had an audience with Bahrain's King Hamad bin Isa Al Khalifa in the presence of Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. He also had a separate call on Deputy Prime Minister Sheikh Khalid bin Abdullah Al Khalifa. During these meetings, the External Affairs Minister conveyed the greetings of President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi, and reaffirmed India's commitment to further deepening the long-standing and friendly bilateral partnership with Bahrain. He thanked the leadership of Bahrain for ensuring the safety, security and well-being of the Indian community in the kingdom. The Prime Minister's Office, PMO, held a high-level review meeting to review possible impact of El Nino on various sectors and preparedness measures. The meeting was held under the chairmanship of Principal Secretary to Prime Minister Dr. P.K. Mishra at the Seva Teerth yesterday. Secretaries and senior officials of more than 15 ministries were present at the meeting. Mr. Mishra directed that the overall situation should be continuously monitored and the impact of the monsoon or delayed monsoon on vulnerable districts must be assessed in coordination with states so that remedial action can be taken up when necessary. Union Home Minister Amit Shah launched the mission to plant 70 lakh saplings in Delhi under the Ek Ped Maa Ke Naam Abhiyan to increase the green cover in the national capital. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the central government and the Delhi government have resolved to fully develop 6,300 hectares of green rich area into forest land over the next 4 years and ensure its protection. And in FIFA World Cup, Argentina defeated Egypt 3-2 in the round of 16 match in Atlanta. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 5:10 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी। हटेगी धुंध जब सवेरा खिल कर आएगा, कोहरा चाहे कितना भी गहरा हो, धूप के आने पर छट ही जाएगा। निराशा के दरिया में गोते मत लगाइए, निराशा के दरिया में गोते मत लगाइए, धीरे धीरे तैरते हुए किनारा भी मिल जाएगा। 5:11 हो चुके हैं, कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं एक बार फिर से आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। इतना आसान नहीं हर ख्वाब पूरे हो जाएं, हर ख्वाब की कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। सिर्फ देखने भर से पूरे हो जाए ख्वाब, सिर्फ देखने भर से पूरे हो जाए ख्वाब, ये भी सिर्फ एक ख्वाब ही है। पूरा करने के लिए थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है।

छोटी छोटी खुशियों में खुश होना अब सीख लीजिए, छोटी छोटी खुशियों में खुश होना अब सीख लीजिए, किसी बड़ी खुशी का इंतजार अब ना कीजिए, कोई बड़ा गम नहीं है इस बात की ही खुशी मनाइए, कोई बड़ा गम नहीं है इस बात की ही खुशी मनाइए, गम ए दुनिया में कितने हैं गमगीन यहाँ पर, विश्वास ना हो तो किसी से भी जाकर पूछ लीजिए। 5:24 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।